आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं और ये सफर है भोर सुहानी का। समय हो गया है 5:33 और 10 सेकेंड। हम आज बात कर रहे हैं सत्य की। वैसे तो सत्य और असत्य में बहुत सारे भेद हैं, पर देखा जाए तो सत्य अनंत है, लेकिन झूठ की एक सीमा होती है जिसके पास पहुंचने पर वो बेनकाब हो जाता है। सत्य हो सकता है तकलीफ दे हो, पर असत्य पहले सुंदर होता है और बाद में उससे तकलीफ होती है।

सत्य को तो हम समझ रहे हैं, पर असत्य क्या है? यानी जो सत्य नहीं है तो क्या वो सारा असत्य है? जैसे कि उजाले के अलावा सब अंधेरा बचता है, तो ऐसे ही सत्य के अलावा सब असत्य बचता है। असत्य को पहचानना आसान है, क्योंकि उसके साथ कितने ही अच्छे से सफर को शुरू किया जाए, कितनी ही चमक के साथ उसके साथ रहा जाए, आप उसके साथ चलते हुए बहुत जल्दी थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे और फिर आप सच की तलाश में निकल पड़ेंगे। सच मुश्किल ज़रूर है, सच कहना मुश्किल है, पर हम सब सच सुनना चाहते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ವೈಷ್ಣವಿ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं. नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई. मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है. इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी.
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है.

0: वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे. दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे. इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा. राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है. गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं. श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है. पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी. ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है. विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है. उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है. राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है. उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया. आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी. राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए. वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे. इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी. फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

ಕುಸುಮ ಸೌರಭಮಾನಯಂತೆ ಪಕ್ಷಾನ್ವಿಧೂಯ ನಿನದಂತಿ ಶಕುಂತ

0: 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। वेल दोस्तों, दो दिन से मौसम थोड़ा बदला हुआ है ना, कि परसों सुबह अगर आपने देखा, मतलब कल सुबह बहुत ही अच्छा था, प्लेजेंट वेदर था ना, मॉर्निंग उठने समय भी कितना प्लेजेंट लग रहा था ना, आफ्टर लगा कि बहुत लंबे वक्त के बाद राहत मिली है, लाइक दिल को सुकून जैसा फीलिंग आया है, राइट। पर आज भी सुबह हम देखे तो थोड़ी बहुत प्लेजेंट हवा आ रही थी, बट आज एक दूसरा चेंज हमें देखने को मिला, वो है कि सड़कें आज बहुत खाली है, क्योंकि भाई आज बहुत सारे जगहों पे ऑफिसेज को, स्कूल्स को हॉलीडे दिया गया है बकरीद के मौके पे। तो आप सभी को ईद मुबारक। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो टाइम अपने आप में। तो आज थोड़ा ट्रैफिक हमें आते वक्त जो है कम देखने को मिला, और शायद आज लगता है कम्यूट करते वक्त हमें शायद उतनी टाइम नहीं लगेगी जितना नॉर्मल दिनों में लगता है। फिलहाल आते हैं हमारे शो के तरफ, जहाँ पे हम आपके लिए लाते हैं थोड़ी बहुत इन्फोटेनमेंट, थोड़ी या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इंटरटेनमेंट और गाने तो हम आपके लिए हर बार लाते ही हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे शो की शुरुआत में अबाउट द यूनिकनेस ऑफ समर इन इंडिया, क्योंकि भाई हम लास्ट लेग ऑफ समर में है ना, मे ऑलमोस्ट नियर टू द एंड, और थोड़े दिन में ही जून है, यानी कि मानसून की शुरुआत तो हो जाएगी, बट बारिश कब हैदराबाद में आएंगी या हमारे यहाँ पे आएंगी उसके लिए थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बट हम जो है, क्योंकि वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ समर, हम बात करते हैं यूनिकनेस की, हमारे यहाँ समर को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं इतने इंटेंस हीट में भी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड कीप लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9।

0: राइट, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी यंगिस्तान, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने. तो जैसे इस अंतराल से पहले मैंने कहा था कि आज हम यूनिकनेस ऑफ समर इन इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं. तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सुनते ही आपको लगेगा यार, 2 महीने से तो हम समर है, गर्मी झेल रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस सीजन, क्योंकि ये सीजन जो है अपने फुल ड्रामेटिक स्टाइल में आता है. और सच बोलूँ तो इंडिया का समर जो है सिर्फ एक सीज़न नहीं है, एक इमोशन कह सकते हैं, क्योंकि हर इंडियन के पास समर की कई कहानियाँ होंगी और शेयर करने के लिए, स्पेशली बचपन में. और फिर कितना डिफरेंस हमने देखा है थ्रू आउट दिस समर्स, स्पेशली समर वेकेशंस की अगर हम बात करें तो कितना चेंजेस आया है ना. और किसी को याद आता है समर वेकेशन स्पेशली, क्योंकि हम बहुत ही इंतज़ार करते हैं ना, जैसे कि अप्रैल आता है कि कब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होंगी, तो कब हमें बाहर जाने का मौका मिलेगा, या थोड़ी देर घर पर रहने का, अपने दोस्तों के साथ खेलने का. और पढ़ना और होमवर्क वो तो हमेशा लास्ट ही आता है ना, वो हमेशा एंड टाइम में हमें याद आता है, भले ही हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स कितना भी बोल ले कि हर दिन थोड़ा कर लो, बट हम हमेशा उसे टाल देते हैं कि बहुत टाइम है मम्मा, हम बाद में कर लेते हैं. और फिर वो जो तैयारी करते हैं हम, वो कुछ ही दिनों में भाग दौड़ में, फिर उसका भी एक अलग ही मेमोरीज हमारे साथ शेयर होती है ना. और क्योंकि इंडियन समर्स यूनिक इसीलिए भी है क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में समर का मतलब क्या होता है, बीचेस, टैनिंग होती है और कूल ब्रीज. हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बोला जाता है बाहर मत जाना, बहुत गर्मी है, लू लग जाएगी. बाहर जाना मतलब शाम के टाइम ही जाना, और फिर शाम जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है यार, समझ में ऐसा लगता है, क्योंकि हालांकि डे बहुत लंबी होती है, बट फिर भी घर से बुलावा आ ही जाता है कि खाना खा लो, फिर सो लो, फिर वही रूटीन लाइफ होती है. बट हम सुनते हैं नहीं सुनते हैं, राइट. तो ये जो यूनिकनेस है या ये जो मेमोरीज है हमारी समर के साथ जुड़ा हुआ, ये बहुत ही नॉस्टैल्जिया हमें देती है फील, है ना. और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होती है, मेमोरीज होती है, जो हमारे दिल में और दिमाग में वो तस्वीर एग्जैक्टली रिगार्डिंग दैट मोमेंट वो आ ही जाता है, और चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान भी आ जाती है, राइट. तो उसी यादों को ताज़ा करते हुए आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत सा गाना. सो एंजॉय दिस ट्रैक.
1: ये कामयाब होटल है, यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती. तुम आते जाओ, हम सोचते जाएंगे.

0: FM Rainbow 101.9।
1: आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। बात कर रहे हैं यूनिकनेस ऑफ समर की, स्पेशली हमारे यहाँ पे। तो जैसे ही हम जर्नी के बारे में बात करते हैं तो वो ट्रेन

सारी जर्नीज काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए, है ना। वो स्टील का वाटर बॉटल और हमारा मन पसंदीदा फूड कैरी करना, और फिर विंडो सीट के लिए लड़ाई अपने सिबलिंग्स के साथ, आज स्टेशन पे मिलने वाला वो चिल्ड वाटर पाउच याद है आपको। लेकिन अगर आज हम देखें तो आज फ्लाइट्स भी फास्ट है, काफ़ी अवेलेबिलिटी भी है, एसी कार्स है, कंफर्टेबल है, बट नथिंग बीन्स दोज समर ट्रेन मेमोरीज, है ना। और इंडियन समर का असली सुपरस्टार कौन होता है भाई? इस सीजन का मैंगोस ऑफ कोर्स, और इसके लिए हम कितना इंतज़ार करते हैं, है ना भाई। आम के बिना इंडियन समर्स इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे पास इतनी वैरायटी भी तो है। मतलब ऑलफोंजो है, बंगनापल्ली है, दशहरी है, मतलब हर वैरायटी आपको थोड़ी दूर पे जो है एक नया वैरायटी मिलता है। और हम कह सकते हैं वी आर वेरी लकी कि इतने सारी मैंगो की वैरायटीज जो है हमारे यहाँ हमें मिल जाती है। और हर घर में फ्रिज खोलते ही आपको मैंगोस तो मिल ही जाएंगे, चाहे किसी भी रूप में हो, या जैसे ऐसे ही बिना कटे हुए मिल सकते हैं, या कट करके मंच करने के लिए भी, फ्रिज में उसे ठंडा करने के लिए भी रखा होगा। मतलब समर्स में इंडियन के घरों में आम होना तो ज़रूरी है ना। और दैट इज हैप्पीनेस, या दैट हैप्पीनेस इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट लेवल। यू डोंट फील दैट हैप्पीनेस अराउंड एनी मोर, राइट? दैट एक्साइटमेंट ऑफ हैविंग द फर्स्ट मैंगो ऑफ द सीजन, है ना। लाइक वी आर प्रिपेयरिंग आर सेल्व्स टू रियली एन्जॉय दैट फ्रूट, रिलिश इट व्हाइल इट लास्ट, राइट? सो थिंकिंग अबाउट दैट मेमोरीज एंड हैविंग द फीस्ट ऑन मैंगोज, लेट्स हियर अ कूल ट्रैक बाय कोल्ड प्ले। एन्जॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9। रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विथ मी आरजी रवली, जहाँ पे बात चल रही है समर के यूनिकनेस के बारे में, स्पेशली हमारे कंट्री में। तो समर जब भी आता है, एक फ़नी थिंग आपने कभी नोटिस किया है कि घर में एक हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो एक्टिव हो ही जाता है। मतलब पानी ज़्यादा पियो, धूप में मत घूमो, नींबू पानी लो, कैप पहन के बाहर जाओ। मतलब इंडियन मॉम्स ड्यूरिंग समर आर बेसिकली वेदर डिपार्टमेंट प्लस मेडिकल डिपार्टमेंट कंबाइंड, है ना। उन्हें ना कहीं नहीं सकते। और वो ट्रेडिशनल समर ड्रिंक्स, मतलब वाह, नींबू पानी हो जाए या आम पन्ना, लस्सी, बटर मिल्क, इंडिया नोज एग्जैक्टली हाउ टू सर्वाइव द हीट इवन इन दिस इंटेंसिटी ऑफ हीट। मतलब वही खासियत है या कह सकते हैं ब्यूटी है ऑफ इंडियन समर्स। मतलब हर रीजन का अपना एक अलग टेस्ट आपको मिलता है। कहीं लोग लस्सी पीते हुए आपको नज़र आएंगे, तो फिर वही कहीं कोकोनट वाटर को ज़्यादा पसंद करते हुए नज़र आते हैं। और फिर एक ऐसा सेगमेंट भी है जहाँ पे आम रस या आम पन्ना का काफ़ी इंतज़ार करते हैं, स्पेशली क्योंकि समर है, तो मैंगोस के साथ ये खाना जो है हमारे दिल को और ज़्यादा कनेक्ट करता है, राइट। और बचपन में रिमेम्बर इलेक्ट्रिसिटी कट्स हुआ करते थे, लाइट चली जाती थी, तो हम क्या करते थे? मतलब सब लोग टेरेस पे जाते थे या हमारे घर के सामने आंगन है अगर, तो वहाँ पे हम हैंड फैंस निकाल लेते थे, या वहाँ पे बिस्तर लगा के तारों को गिनना, या तारों की क्या अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, या कोई हमें स्टोरी सुनाता था, या फिर दिन का हमने क्या किया, या जो भी है वो बातें, वो फुल एम्बियंस या कह सकते हैं वाइब जो है वो आजकल हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है ना, क्योंकि आज का सिनारियो बहुत ही डिफरेंट हो गया है। आज एसी रूम्स में कंफर्ट है, बट दोस्त तो टेरिस कन्वर्जेशंस हैड अ डिफरेंट वाइब, है ना। और स्पेशली अगर कजन्स भी हमारे साथ हो जाते हैं तो वो एक अलग ही मज़ा, फन, एंटरटेनमेंट हो जाता है हैविंग योर कजन्स ऑल टुगेदर फॉर अ समर ब्रेक, राइट। मतलब पूरा समर ब्रेक नहीं, एटलीस्ट थोड़े समय के लिए ही अपने कजन्स अपने साथ रहना, उनके साथ थोड़ा मस्ती करना, और फिर वही मेमोरीज हम ले चलते हैं थ्रू आउट द लाइफ। और फिर वही हम जब भी मिलते हैं बड़े हो जाने के बाद, वी नीड टू टेक अपॉइंटमेंट्स हो जाता है कि कब हम मिलना, उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, एंड देन वी सिट एंड टॉक अबाउट ऑल दिस मेमोरीज दैट वी चेरिश, राइट। सो इसी के साथ एक और गाना सुनते हैं, बने रहिएगा ओनली ऑन FM रेनबो 101.9।

मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिकनेस ऑफ समर इन इंडिया के बारे में, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। तो जैसे ही हम समर की बात करते हैं तो समर फैशन बिकम्स टोटली यूनिक, राइट? सडनली एवरीवन टर्न्स इनटू एक्सपर्ट इन कॉटन क्लोथ्स, यू नो, वाइट कुर्ताज, लूज टी शर्ट, सनग्लासेस एंड कैप्स। एंड ड्यूरिंग समर इवन रिलेटिव्स बिकम्स एक्सट्रैक्टिव ना। सो व्हाट आर योर हॉलीडे प्लान्स, यू नो, या कितने मार्क्स आए हैं, हाउ मच यू हैव ग्रोन अप, यू नो, आफ्टर सेइंग फॉर अ सर्टन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो समर इज बेसिकली अ रियूनियन सीजन ऑल्सो, एंड फॉर वाटरमेलन, मस्क मेलन, आइस गोला, कुल्फी, मटका कुल्फी, फलूदा, ये सब चीज़ें ये हमें यू नो स्पेशली समर्स में देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो इंडियन समर्स नो हाउ टू बैलेंस हीट विथ हैप्पीनेस। एंड रिमेंबर दोज रोड साइड गोला वालास, मतलब रेड ब्लू ऑरेंज कलर्स, टंग पूरा रेनबो बन जाता था। और अगर घर पर मम्मी बोलती थी कि पता चल गया उनको हमने खाया, कि बाहर का खाना मत खाना, बट फिर भी हम कहाँ सुनते थे, है ना? और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इंडिया का समर टफ ज़रूर होता है, बट इट ऑल्सो टीचर्स अस पेशेंस। मतलब पीपल थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, आफ्टरनून ज़्यादा क्वाइट हो जाते हैं, इवनिंग बिकम्स मोर सोशलाइजिंग, और बारिश का वेट जो है शुरू हो ही जाता है ना। एंड दैट फर्स्ट रेन आफ्टर पीक समर गूज बम्प्स, राइट? कूल ब्रीज, और सडनली एवरीबडी इज़ हैप्पी। मे बी दैट्स वाई समर इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ही इंटेंस हीट के बाद वी वैल्यू द रेन इवन मोर। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

वेल तो हम हमारा सफ़र जारी रखते हैं ऑन नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन समर की और इसकी यूनिकनेस की. राइट, इंडियन समर जो है इंस्पायर करते हैं बहुत सारी मूवीज़ को और गानों को भी. मतलब विलेज वाइब्स हो जाए, वेकेशंस, लव स्टोरीज और क्रिकेट एंड गलीज. एंड ओ यस, क्रिकेट. मतलब समर हॉलीडेज बिना क्रिकेट के इम्पॉसिबल लगता है. सुबह से शाम तक गली क्रिकेट, वन टिप वन हैंड. मतलब एक कई बार नेबर अंकल ने कभी हमें सुना भी दिया होगा कि ग्लास टूट गया, शीशा आपको लग गया. तो लेजेंडरी मेमोरीज होती है वो हमें, हालांकि हम जानबूझ के नहीं करते हैं, बट वी आर ऑन दैट जोन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो हम उस जोन में होते हैं. कई बार बॉल लग भी जाता है तो फिर वो सॉरी बोलना और फिर उनका डांटना, फिर वो भी ये एक नॉस्टैल्जिया हमारे लिए बन जाता है. और अगर हम देखें लाइक आज के किड्स में भी स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन, बट समवेयर सम स्टिल ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, है ना. फैमिली ट्रिप्स आते हैं, ड्रिंक्स शेयर विथ कजन्स, स्पेशली हमारे फेवरेट समर ड्रिंक्स हो जाए जिसके बारे में हमने बात किया है. फिर वो लेट नाइट वॉक्स या आइसक्रीम प्लान्स, स्पेशली इन द नाइट ड्यूरिंग समर. मतलब समर इन इंडिया इज केओटिक, हॉट, स्वेटी, बट फुल ऑफ लाइफ. और ऑनेस्टली दैट्स वॉट मेक्स इट ब्यूटिफुल, है ना. सो वेर आर यू राइट नाउ, इन द ऑफिस, इन द कार, और सिटिंग एट होम इन फ्रंट ऑफ द कूलर, टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट योर फेवरेट समर मेमोरी. योर ग्रैंडमास हाउस, या द सीजन्स फ्रूट, मैंगोज, और वेकेशन ट्रिप्स, और मे बी दोज लेजी आफ्टरनून नैप्स. बिकॉज इंडियन समर्स आर नॉट रिमेंबर्ड फॉर द टेम्परेचर, दे आर रिमेंबर्ड फॉर द इमोशंस. एंड विद दिस ब्यूटिफुल थॉट वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट म्यूजिक ब्रेक. स्टे ट्यून टू एफ एम रेनबो 101.9. यू आर कमिंग टेलर स्विफ्ट, क्रूल समर. एंड आप सुनते रहिए हमारे साथ FM Rainbow 101.9, और स्टे हाइड्रेटेड क्योंकि समर है, स्टाइल भी जरूरी है और पानी भी. तो बैक इन अ बिट आफ्टर दिस ट्रैक, स्टे ट्यून्ड.

0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9. सो दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में आज काव्या भी है, आरजे काव्या मेरे साथ. तो वो भी आपके लिए बहुत सारी इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट कह लीजिए, वो आपके साथ साझा करने के लिए एकदम तैयार है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद काव्या.
1: थैंक यू सो मच रवली. हेलो हैदराबाद, मैं हूँ आपकी आरजे श्री काव्या. आज सडनली ये चमकता धमकता शहर शांत हो गया है ना. ट्रैफिक में हॉर्न्स कम और लोगों की हंसी मुस्कुराहट ज्यादा दर्शा रही है. और होगी भी क्यों नहीं, फेस्टिवल जो है, ऊपर से छुट्टी. छुट्टी के दिन अचानक सूरज की किरणें भी बड़ी अच्छी लगने लगती है ना. फिर उसी नोट पे हो जाए एक खूबसूरत सा गाना.

सो दैट वॉज एन अमेजिंग स्टार्ट टू अ डे. और क्यों ना हो, त्योहार भी छुट्टी भी, आज तो जिंदगी से अलग ही मोहब्बत हो जाती है. सो दोस्तों, आज माहौल भी है और मौका भी. तो आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करना चाहती थी. मई के महीने हर साल मनाया जाता है नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ. अगर आपका मन भारी है, जिंदगी के भागदौड़ से परेशान है, तो आज के दिन जरूर अपने लिए कुछ मनचाहा काम करना. आपके फेवरेट आकाशवाणी रेनबो एफएम 101.9 सुनने से लेकर एक गर्मा गर्म चाय के प्याले तक, वो काम कुछ भी हो सकता है जो सिर्फ आपके लिए है और आपकी खुशी के लिए हो. इस चीज पर हम और चर्चा करेंगे. फिलहाल के लिए ये फील गुड गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 10:59:44। सबसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे 11 बजे न्यूज हेडलाइंस एंड उसके बाद हम वापस हाजिर हो जाएंगे। नमस्ते, हेलो, आदाब के साथ। सो स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।

0: आस पास है खुदा फ्रॉम अनजाना अनजानी, सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दिस इज। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपकी आरजे श्री काव्या। वी थिंक वी आर अलोन इन दिस जर्नी, बट देर इज अ ग्रेटर फोर्स दैट वी नॉट नो ऑफ विच इज ऑलवेज रूटिंग फॉर अस। वी हैव टू गो थ्रू द डार्क टनल टू अप्रिशिएट द लाइट एंड सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। दैट्स वॉट दिस सॉन्ग सेज। Such a beautiful rendition of words, isn't it? On that note, talking about mental health, dear listeners, we were talking about how just doing one activity per day, just for us, can change our whole mood and make us feel better about ourselves. Every day amongst these responsibilities and hustle bustle, especially for all the homemakers out there, who just dedicate their entire life, even their sleep, worrying about their family, only to feel exhausted, burnt out, and not feel seen. This is for you. I understand, आपके घर में हर किसी की जरूरत पूरी करने में ही आपको बहुत मजा आता है और यही आपका पसंदीदा काम है, पर ऐसा कुछ तो होगा जो सिर्फ आपको पसंद है। चलो बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। क्या आपको अपना फेवरेट डिश याद है? लास्ट घर पे आपका फेवरेट खाना कब बना था? सबकी ख्वाहिशें पूरी करते करते खुद की पसंद भूल गए आप? चलिए आज याद कीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि आज आपका फेवरेट खाना बनेगा घर पे। ये एक कदम लेकर देखिए एंड यू विल थैंक मी लेटर। वैसे इफ यू आस्क मी, माई फेवरेट डिश इज गर्मा गर्म छोले भटूरे और छोले पूरी। अब तो वैसे वेदर भी बढ़िया होने वाला है, बहुत मजा आएगा। और ऐसी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, तब तक के लिए एंजॉय दिस ब्यूटिफुल वेस्टर्न म्यूजिक आफ्टर अ कमर्शियल। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।
1: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
2: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయో వృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
1: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.

0: Just chill.
1: हाँ जी हाँ, जस्ट चिल. एंड यू नो हाउ वुड यू फील आफ्टर राइटिंग वो फाइव थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर? बताया था ना मैंने आपको गाने से पहले, ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड राइट फाइव थिंग्स दैट यू आर एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर. एंड यू नो हाउ वुड यू फील आफ्टर यू प्ले आफ्टर यू राइट ऑल दोज फाइव थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर?
2: One more time.

0: సేవలకు సంబంధించిన హక్కులు 1987 సెక్షన్ 12 లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం దేశ పౌరులు ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా న్యాయ సహాయాన్ని న్యాయబంధు మొబైల్ యాప్ మరియు www.probono-doj.in ద్వారా పొందవచ్చు.
1: बस अभी अभी आपने सुना मनवा लाइक्स टू फ्लाई फ्रॉम तुम्हारी सोलो. जिंदगी है सरा टच में, दैट्स हाउ यू फील आफ्टर यू राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. वैसे अगर आप मुझसे पूछो कि व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर, देन द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज यू माय ब्यूटिफुल लिसनर्स, जिनसे बात करना, उनके लिए गाना बजाना, दैट इज व्हाट आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर. यू नो, जैसे मुझे तो आपसे

0: 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। वेल, आज है 28 मई, तो आज इस दिन एक ये खास दिन है हम कह सकते हैं, जहाँ पे आज हम याद करेंगे एक ऐसे क्रांतिवीर को जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम कर दी थी। उनका नाम है वीर सरवाकर, विनायक दामोदर सरवाकर, जिन्हें हम वीर सरवाकर के नाम से ज़्यादा पॉपुलरली उन्हें जाना जाता है। तो उनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 में। वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, बल्कि वो एक पावरफुल राइटर भी रहे थे, एक थिंकर भी थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। और सरवाकर जी ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद लॉ की पढ़ाई भी उन्होंने किया था लंदन से, ग्रे इन्स में उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। और लेकिन उनका असली मिशन की अगर हम बात करें, वो थी भारत को आज़ाद करना। मतलब 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई, जिसका एम था ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना। लंदन में रहकर भी उन्होंने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी के थ्रू कई यंग रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया। तो दोस्तों, वीर सरवाकर की एक और बहुत बड़ी पहचान थी उनकी राइटिंग। उनकी फेमस बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ने 1857 की क्रांति को पहली बार इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। इतनी पावरफुल थी कि ये किताब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे पब्लिश होने से पहले ही बंद कर दिया। तो मतलब वो एक क्रांतिकार ही नहीं, मतलब पावरफुल राइटर थे जो बहुत सारे यंग रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर करते थे, जिससे कि और उनका एम यही था कि भारत को आज़ाद करना। तो इसी के साथ हम सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी भगत सिंह। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9।
1: आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं आपके साथ आरजे रवली। और स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:50 और 15 सेकेंड। और इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे विनायक दामोदर सरवारकर, जिन्हें वीर सरवारकर के नाम से ज़्यादा बेहतर जाना जाता है। तो जैसे हमने जाना, उनकी वो एक क्रांतिकारी नहीं, बहुत ही पॉपुलर एक पावरफुल राइटर भी थे। तो उनकी किताब जो थी, उनकी फेमस बुक रही द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। मतलब ये बुक रिलीज़ होने से पहले ही ब्रिटिश

तो जैसे हमने जाना, उनकी वो एक क्रांतिकारी नहीं, बहुत ही पॉपुलर, एक पावरफुल राइटर भी थे. तो उनकी किताब जो थी, उनकी फेमस बुक रही द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. मतलब ये बुक रिलीज होने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बुक को पब्लिश होने से ही बैन कर दिया था. और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 1910 में अरेस्ट किया और डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई. वीर सावरकर ने अंडमान के सेलुलर जेल में सालों तक कठिन मेहनत और अत्याचार उन्होंने सहे था, लेकिन उनका हौसला जो था वो कभी नहीं टूटा. सिर्फ रेवोल्यूशनरी ही नहीं थे, सावरकर जी एक सोशल रिफॉर्मर भी थे. उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इंटरकास्ट डाइनिंग को प्रमोट किया और ऐसे नो मंदिर बनवाए जहाँ हर कास्ट के लोग जो है वहाँ जाके प्रेयर कर सकते थे. तो दोस्तों, आज वीर सरवार जी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनका साहस, उनका विचार और देश के प्रति उनकी डेडिकेशन को हम सलाम करते हैं. तो एक और गाना सुनते हैं, फिल्म पूरब और पश्चिम से. एंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फ्रॉम रेनबो 101.9 पर. नमस्ते, हेलो, आदाब. तो दोस्तों, 3 o'clock में वक्त हुआ है 11:57:25. सबसे कुछ ही देर में 12 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ हिंदी में, फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश. उसके बाद हम नमस्ते हेलो आदाब के साथ वापस हाजिर हो जाएंगे. तो बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन एफ रेनबो 101.9.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक

0: सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation

0: Rainbow 101.9.
1: Welcome back. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 101.9. नमस्ते, हेलो, आदाब में आपका एक बार फिर से स्वागत है. बस स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:11:38 इन द स्टूडियो क्लॉक. तो आप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो हर घर से कनेक्टेड है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन फैमिलीज, विच आर मोबाइल फोन्स. मतलब सच बताओ, एक टाइम था जब घर में सिर्फ एक लैंडलाइन होता था, और वो भी मोस्टली ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में. और अगर किसी का फ़ोन आता था तो पूरे घर को इन्फॉर्म हो जाता था या पता चल जाता था, और फिर बुलाते थे हमें फ़ोन के लिए कि तुम्हारा फ़ोन आया है, और सबको क्यूरियोसिटी होती थी कि किसका फ़ोन है, कौन है फ़ोन पे, और कितने देर से बात कर रहे हो, और कितना टाइम लगेगा. मतलब प्राइवेसी थी ही नहीं, और फिर ना सबकी निगाहें हम पर रहते थे, कितना देर बात करेगी. फिर जिनका चांस चाहिए होता था उन्हें कॉल करने के लिए, तो वो वेटिंग टाइम एक लंबा रहता था. बट सब जब घर के ड्राइंग रूम्स में ओनली लैंडलाइंस होती थी, तो उसका मज़ा ही एक और होता था, क्योंकि जब भी फ़ोन की घंटी बजती थी ऑलमोस्ट सब लोग भागते थे फ़ोन उठाने के लिए, चाहे वो फ़ोन किसके लिए है ये हमें पता नहीं होता था. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लैंडलाइन फोन्स, इज़न्ट इट, इन द बिगिनिंग एटलीस्ट. सो हियर कम्स एन अमेजिंग सॉन्ग, एन्जॉय दिस ट्रैक.

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9। और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब पर, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी फैमिली की डायनेमिक्स को चेंज किया है। पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे ना, और रिमेंबर वो लैंडलाइन फ़ोन्स में वो ट्रिंग ट्रिंग वाली बेल और उसकी फोर लॉन्ग वायर, और फ़ोन उठाते ही क्लासिक लाइन हम बोलते थे, हेलो कौन बात कर रहा है, राइट? और आज अगर हम देखें, प्रॉबेबली द किड्स ऑफ टुडेज एज वोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ वेटिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट कॉल। और फिर वो एसटीडी के कॉल्स, मतलब क्या इंतज़ार करते थे कि स्पेशली रात के टाइम पे, कि वो थप वेट किया करते थे क्योंकि प्राइसेस थोड़ी कम होती थी, तो उस कॉल के लिए भी टाइमिंग हमें परफेक्टली प्लान करना पड़ता था। और फिर उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन्स आए हमारी ज़िंदगी में, एंड स्लोली इंडियन फैमिली स्टार्टेड चेंजिंग। एट फर्स्ट मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो सिर्फ स्टेटस सिंबल रहे थे, बट एंटीना वाले फ़ोन्स, फिर मोनोक्रोम स्क्रीन्स, फिर वो स्नेक गेम्स, और फिर वो लिमिटेड बैलेंस, और फिर वो रिचार्ज करने के लिए हमें अपने पास वाले शॉप पे जाके उसे स्क्रैच करके रिचार्ज करना, वो सब मेमोरीज हैं हमारे लिए, राइट? आजकल तो हम घर बैठे ही रिचार्ज कर लेते हैं, बट तब हमें वापस बकायदा शॉप जाना पड़ता था, वो ख़रीद के जो है रिचार्ज करने के लिए भी थोड़ी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती थी, है ना? और फिर एक हमारा एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज भी होता था, है ना? कभी कभी हमने स्कूल मिस कर दिया तो हम अपने फ्रेंड्स के लैंडलाइन पे कॉल करके हाल चाल पूछते थे कि भाई आज क्या हुआ है, राइट? तो ये सारी चीज़ें, मगर आज तो हम इंस्टेंटली मैसेज कर लेते, हमें पता भी चल ही जाता है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं, क्योंकि एक मिस्ड कॉल का मतलब होता था उस टाइम पे कि हाँ आई हैव रीच, या टू मिस्ड कॉल्स का मतलब होता था कॉल मी बैक। सो कम्युनिकेशन का जो है हैड इट्स ओन सीक्रेट कोड, बट टुडे एवरीथिंग फिट्स इनसाइड दैट स्मार्टफोन। कॉल्स हो, फोटोज हो, बैंकिंग हो, शॉपिंग, फैमिली फोटोज, वीडियो कॉल्स, ऑल इन वन डिवाइस, है ना? तो ये ग्राफ हमने चेंज होते हुए देखा है। सो वी बिन विद द लैंडलाइंस, और फिर उससे देखे हमने मोबाइल्स कैसे इंटर हुए इन द वर्ल्ड, और फिर धीरे धीरे फैमिली में हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स आज होना काफ़ी ज़रूरत भी हो चुका है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो बने रहेगा ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9।
1: ఇంటి ఖర్చులకి డబ్బులు ఇవ్వండి భర్త గారు.
2: ఇది రేషన్ కి 15,000, కూరగాయలకి 2,000.
1: మరి కరెంటు బిల్లుకు
2: 0 రూపాయలు ఎలా ఇస్తాను?
1: ఓహో మర్చిపోయా, ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టించాం కదా, దాంతో 4,000 రూపాయలు మిగిలాయి కదా, దాంతో షాపింగ్ చేద్దామా?
2: సరే.
3: పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన చేరడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. పిఎం సూర్యఘర్ .gov.in.

101.9. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब। मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे मोबाइल फोन्स ने इंडियन फैमिलीज को चेंज किया है। तो जैसे हम बात कर रहे थे इस अंतराल से पहले कि एक मिस्ड कॉल का मतलब होता था कि हम पहुंच गए, दो मिस कॉल्स का मतलब होता था यू कैन कॉल मी बैक। तो कम्युनिकेशन का अपना एक तरीका होता था या सीक्रेट कोड होता था टू वे कम्युनिकेट दैट बैक देन, राइट। तो आजकल कैसे हो गया है, पहले हम अपने रिलेटिव्स में साल में कभी कभार मिलते थे, कोई ओकेशंस में मिलना होता था, पर आज बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स हम डेली मैसेज आते हैं, और स्पेशली इंडियन फैमिली के ग्रुप्स होते हैं, दैट्स यूनिवर्स इन इटसेल्फ, राइट। कोई हमें इस ग्रुप में वीडियोस भेजता हुआ नज़र आता है, तो कोई हेल्थ टिप्स शेयर करते हुए कुछ नज़र आता है, तो कहीं और कुछ ओल्ड फैमिली फ़ोटोज़ हमें शेयर करते हुए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स होते हैं, उस ग्रुप में कुछ नहीं करते सिवा रहने के और देखने के, राइट। और फिर इवन दैट एवरी फैमिली हैज़ दैट गुड मॉर्निंग विथ फ्लावर्स पर्सन, राइट। और फिर वीडियो कॉल्स ने इमोशंस को कम्प्लीटली ही चेंज कर दिया। मतलब पहले वी पीपल वर्किंग इन डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज यूज टू मिट फेस्टिवल्स एंड फैमिली मूवमेंट्स टुगेदर, राइट। बट अब दिवाली हो, बर्थडेज हो, वेडिंग हो, एवरी वन जॉइंस ऑन वीडियो कॉल इफ दे कॉन्ट बी इन पर्सन इन दैट मोमेंट, राइट। तो डिस्टेंस फील्स अ लिटल स्मॉलर नाउ कम्पेयर टू देन। मतलब फिजिकली उनकी नहीं होने का खलता है कभी कभी, बट वीडियो कॉल में एटलीस्ट वी कैन टॉक टू देम एंड हैव देम इन दैट मोमेंट एटलीस्ट, राइट। स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, और आजकल तो हम ग्रैंड पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर भी बात कर लेते हैं, वो हमारे स्कूल फंक्शंस या जो भी हम काम करते हैं आज बच्चों के जो भी काम होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, तो वो भी हम शेयर कर देते हैं। सो इट हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, राइट। सो टेक्नोलॉजी समहाउ ब्रॉट जनरेशंस जो है क्लोजर, बट एट द सेम टाइम जो है मोबाइल फोन्स ने इंडियन फैमिली हैबिट्स को थोड़ा बदल दिया है, राइट। तो वो कैसे बदला हम जानेंगे इस गीत के बाद, सो स्टे ट्यून्ड विद दैट।

स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:32:29। हम बात कर रहे हैं कैसे मोबाइल फोन्स ने इंडियन फैमिलीज को चेंज किया है। तो जैसे हमने इस अंतराल से पहले मैंने कहा था कि मोबाइल फोन्स हैव चेंज्ड फ्यू फैमिली हैबिट्स इज वेल, क्योंकि अर्लियर डिनर टेबल्स मेंट कॉन्वर्जेशंस, नाउ समटाइम्स एवरी वन इज़ टुगेदर फिजिकली बट बिजी ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स, राइट? कोई न्यूज़ कॉल कर रहा है, कोई रील्स देख रहा है, और किड्स शायद गेम्स खेल रहे हैं, एंड समबडी टेकिंग सेल्फी। सेम रूम डिफरेंट वर्ल्ड्स, राइट? हर कोई अपना अपना कर रहा है, साथ में रह कर भी कभी कभार लगता है कि शायद हम उस मोमेंट में नहीं है। एंड ऑनेस्टली एवरी इंडियन पेरेंट हैज सेड दिस एट लीस्ट वंस, है ना, कि फोन साइड पे रखो और खाने पे ध्यान दो, राइट? और इवन नॉट ड्यूरिंग योर डिनर टाइम या लंच टाइम के अलावा भी कई बार हमने सुना है कि फोन को थोड़ी देर तो अपने से दूर रखो, एंड यू नो बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। बट डिस्पाइट ऑल दिस, फोन्स ऑल्सो बिकेम इमोशनल सपोर्ट सिस्टम समटाइम्स, है ना। सोच के देखिए, वन क्विक कॉल फ्रॉम होम कैन इंस्टेंटली इम्प्रूव योर माइंड, और अपना यू नो फ्रेंड के साथ बात करना, यूजुअली कभी कभार उनका फ़ोन ऐसे अचानक आ जाना और आपका मूड बहुत ही यू नो लो फील कर रहे हो, एंड यू गेट द कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड और योर मदर, दैट इंस्टेंटली मेक्स योर मूड अप, राइट? कहीं ना कहीं आप थोड़ा बेटर तो फील करते ही हो आफ्टर दैट कॉल। एंड स्पेशली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, स्पेशली अगर हम बात कर लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, फोन्स जो थे हमारे लाइफ लाइन्स बन गए थे, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, द ओनली मीडियम वी हैड दैट वॉज डिजिटली हम कनेक्ट कर पा रहे थे, एटलीस्ट लगा एटलीस्ट हमारे पास यू नो कोई लोग है बात करने के लिए थ्रू फोन्स और जो भी जरिया था हमारे पास बात करने के लिए। सो दैट मेड अस फील कनेक्टेड विद आर फैमिली एंड फ्रेंड्स इवन ड्यूरिंग दोज टफ टाइम्स, राइट? चलिए एक और गाना सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी घर। एंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन FM रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ RG रवली।

Well, that was a lovely track by Charlie Puth. Now we're talking about how mobile phones have changed Indian families, right? And how some habits have definitely changed and some have been evolved, right? And now we see, you know, kids teaching their parents navigating the smart devices or smartphones, right? So using phones to stay connected without disconnecting from the people sitting beside us, because no matter how the technology has grown or advanced, nothing replaces the real conversations, shared laughter and family moments, right? तो आज थोड़ी देर के लिए या आज रात नो थोड़ा वक्त निकालिए, अपनी फ़ोन को बाजू में रखिए और सिट विद योर फैमिली, जस्ट उनके साथ नो बात कीजिए, अपनी कहानियाँ शेयर कीजिए, या आज की दिनचर्या आपकी कैसी रही, इफ़ यू हैड वर्क उसके बारे में बात कीजिए, इफ़ यू हैड अ डे ऑफ आपने अपने डे को कैसे स्पेंड किया वो उनके साथ शेयर कीजिए. तो इसी क्योंकि कहते हैं ना कि बेस्ट कनेक्शंस जो है वो स्टिल हैपन दैट विद हार्ट टू हार्ट, और कभी कभार हमें इस मोमेंट में रहते हुए शेयर करने से कई बार दिल भी हल्का हो जाता है. तो नॉट जस्ट फोन बट उसको यूटिलाइज

हम करेंगे जैसे करना चाहिए, बट समटाइम्स अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस मेक अ रियल डील, राइट? तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ लेट्स हेड टू दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक ब्रेक. मूवी फ्रॉम गुरु से हरिहरन का गाया हुआ ये प्यारा सा गाना आप सुनिए और हमारे साथ बने रहिएगा ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. मैं हूँ आपके साथ RJ रफली.

वेल, स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:56, यानी कि कुछ ही देर ही बचा हुआ है हेलो रेनबो शुरू होने के लिए, जहाँ पे टॉपिक हम आपके लिए लाते हैं और आपके ओपिनियंस या आपके विचार जो है हम तक पहुँचते हैं। तो टॉपिक आज का क्या है सुनने के लिए बने रहिएगा ओनली ऑन FM रेनबो 101.9। कुछ ही देर में हम वापस आ जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू। नमस्ते, हेलो, आदाब।

101.9. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो 3 o'clock में एक बज चुका है, मतलब हेलो रेनबो की शुरुआत हो चुकी है। तो क्यूरियोसिटी तो होगी कि आज का हमारा सवाल आपसे क्या है, राइट? तो भाई आज हम थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर ही रहे थे, है ना, कि कैसे यू नो समर हमारे कंट्री में काफ़ी यूनिक है और कैसे यू नो लैंडलाइंस फ़ोन से हमने मोबाइल फ़ोन्स की तरफ शिफ्ट हुआ और कैसे उसने थोड़ी बहुत हमारी आदतें यू नो शिफ्ट किया है, चेंज किया है। एंड यू नो स्टिल आज हम और कुछ नया सीख रहे हैं। नाउडेज किड्स जो है पेरेंट्स को उसे नेविगेट करना सिखा रहे हैं। सो इन दिस बिटवीन तो आज हमारा टॉपिक भी जो है हमारे चाइल्डहुड से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना वैसे वैसे लाइफ तो चेंज हो ही जाती है, लेकिन कुछ चाइल्डहुड हैबिट्स जो है कभी नहीं बदलती, राइट? मे भी आज भी आप यू नो पहले बिस्किट का क्रीम खाना पहले पसंद करते हो, या टीवी देखते ही खाना खाना पसंद करते हो, या स्टिल कुछ और जो चीज़ें जो आप बचपन में किया करते थे और वो आज भी आपके साथ चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी सिंपल है। तो वन हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड जो आज भी नहीं बदला, दैट यू हैवेंट चेंज। तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं एक ऐसी हैबिट जो आपके बचपन से अब तक चेंज नहीं हुआ है। तो कॉल कीजिए और बताइए आपकी क्यूटेस्ट, फनी या थोड़ी बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरीज, क्योंकि ऑनेस्टली ग्रो मतलब हम एज में बड़े हो जाते हैं वो मैंडेटरी है, बट अंदर का वो बच्चा हम अभी भी उसे ज़िंदा रख ही सकते हैं ना। तो आप कॉल करके हमें बताइए, कॉल कीजिए 0402323 3023234821 या 2970471 पर कॉल कीजिए और आपकी स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए।

0: ऑलराइट, तो हम बात कर रहे हैं हमारी बचपन से कोई आदत जो आज तक हमने नहीं बदला है। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो हैबिट जो आज भी उन्होंने नहीं बदला। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम. मेरा नाम राहुल है.
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: मैं हैदराबाद के यात्रा लोकेशन से बोल रहा हूँ.
0: जी,
1: तो मेरी बचपन की एक आदत है, जब हम स्कूल से निकलते थे तो
0: सर,
1: स्कूल के बाहर वो जो चॉकलेट टॉफी बेचने की छोटी सी गाड़ी लगी होती थी,
0: ओके,
1: उसमें से हम वो खट्टी मीठी इमली की एक पट्टी आती है
0: जी
1: जो हम खरीद करके चूसते हुए उसको बातें करते हुए घर तक
0: जी
1: जाते
0: जी
1: थे.
0: जी
1: तो वो एक स्वीट मेमोरी है जो आज तक बदली नहीं है. आज भी जब भी मैं ऑफिस से घर के लिए निकलता हूँ
0: जी
1: तो कभी कभी वहां पर रुक करके उसको खरीद करके वही
0: ओ,
1: बचपन की मेमोरी को ताजा
0: ताज़ा
1: करते
0: कर
1: हुए
0: लेते हो। जी
1: उसको,
0: जी
1: हाँ, तो अच्छा लगता है. अभी भी,
0: हाँ
1: अभी मैं
0: हाँ
1: अपने एज के 50s में आ गया हूँ,
0: जी
1: ऑलमोस्ट
0: बिल्कुल,
1: स्कूलिंग छोड़ करके 33-35 ईयर्स हो गया है.
0: हाँ हाँ
1: लेकिन वो एक आदत है जो मैं अकेला ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स में भी नहीं बदली है.
0: जी, बहुत ही अच्छी
1: तो
0: बात है,
1: आज
0: कुछ आदतें नहीं बदले तो ही अच्छा है।
1: हाँ, तो अच्छा है. स्वीट मेमोरी, स्वीट ही होता है, वही
0: जी
1: लाइफ है,
0: राइट राइट जी
1: वो हम
0: सर
1: भी नहीं बदलते हैं.
0: बिल्कुल, तो इन्हीं
1: तो
0: छोटी मोटी
1: कोई
0: यादों को एंजॉय करते
1: भी
0: रहिए, ये चीज़ें लाइफ में यही मायने रखती
1: जी
0: है। थैंक यू फॉर
1: जी
0: कॉलिंग
1: हाँ,
0: सर,
1: थैंक यू, गुड डे,
0: गुड डे। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम.
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम, कहाँ से बात कर?
1: नरसिम्हा रेड्डी मैडम, प्रेमावती पेट से. कैसे
0: नरसिम्हा जी, बोलिए सर।
1: हैं मैडम
0: मैं
1: आप?
0: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया हूँ मैडम.
0: चलिए सर, अच्छा है। तो सर, आपकी कौन सी आदत है जो बचपन से अभी आपने बदला नहीं है, कर रहे हो आप उसे कंटिन्यू?
1: मैडम बचपन में तो चना मूंगफली होता ना मैडम,
0: हाँ जी,
1: वो बहुत गरम गरम बहुत खाते थे मैडम. आज भी मतलब डेली तो नहीं खाते, खाने
0: जी, कभी कभार,
1: को दिल बोलता खाते रहते, कभी भी 2 दिन में 3 दिन में.
0: हाँ,
1: वो आदत अभी तक नहीं छूटी मैडम.
0: ओके। तो आप मतलब
1: वो
0: खाते हैं, ये मेंटेन करते, कभी कभार तो चलता है इतना तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करते हुए खाते मैडम. थैंक
0: जी, राइट, कहते हैं ना कि
1: यू
0: छोटी छोटी
1: मैम.
0: चीजें ही लाइफ को बनाती है, इन बड़ी चीजों के जो हम वेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर।
1: थैंक यू मैडम.
0: राइट, तो जैसे हमारे कॉलर से बात की है कि बचपन में वो कुछ जो स्कूल से जुड़ी हुई यादें हैं, तो वो टॉफ़ी खाना अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, पहली चीज़ जब हम स्कूल ख़त्म होता था, कोई टॉफ़ी खाते थे, कोई वो आइस पॉप्सिकल खाता था, अपना अपना रूटीन होता था। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वो रूटीन थोड़ा बहुत छूटता गया, बट कभी कभार उसे खा लेना और फिर वो पूरी इंटायर मेमोरीज एक रील की तरह हमारे दिमाग में एक फ्लैश हो जाता है ना? इसके लिए हमें कोई डिजिटल फोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कैमरा की, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग ही हमारे लिए मेमोरी स्टोरेज है, राइट? एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हेलो सर, आपका नाम?
1: नमस्कार जी.
0: नमस्कार सर, आपका नाम?
1: मेरा नाम वोलेड प्रभाकर राव है. तो
0: जी प्रभाकर जी, चल बोलिए सर।
1: मेरा आदत क्या है, तो बचपन से स्कूल को गए उस टाइम पे शाम
0: जी
1: में खेल खेलते थे गेम्स, आके फिर स्नान करना है.
0: हाँ जी, फ्रेश अप होके, हाँ फिर
1: हाँ, सुबह शाम स्नान करते हैं और शाम में भी.
0: जी
1: उसके बाद सर्विस में हो गया, सर्विस में भी बाहर से आती है ना बोल के फिर शाम में स्नान करना है. अभी भी वही कंटिन्यू चल रही.
0: अच्छा, तो ये आदत आप मेंटेन रख रहे हो,
1: हाँ,
0: नाइस,
1: सुबह एक बार फिर शाम को
0: ओके।
1: कहीं भी जाओ, कहीं भी घर में रहे तो भी स्नान करके थोड़ा पूजा करके फिर जब खाना खाता हूँ.
0: राइट राइट, नाइस, तो ये आदत आप मेंटेन करके रख रहे हैं, दैट यू आर
1: अभी तक
0: फॉलोइंग दिस
1: मेंटेन चल रहा है
0: इयर्स,
1: भगवान के ऊपर से.
0: राइट राइट। थैंक यू
1: थैंक
0: सर,
1: यू
0: थैंक
1: वॉलेट
0: यू फॉर
1: प्रभाकर
0: शेयरिंग,
1: फ्रॉम बेंगलोर.
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। राइट, तो आपके साथ भी ऐसी कोई मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हो, भले ही वो क्यूट हो सकते हैं, सम माइट बी फनी एंड सम माइट बी एम्बैरेसिंग, ये सारी जो चीज़ें हमारे साथ बचपन में हुए होंगे डेफिनेटली, राइट? तो एक ऐसी आदत जो आपने कभी नहीं बदला, मतलब स्टिल यू हैवन चेंज्ड इट टिल नाउ, आप हमें कॉल करके बता सकते हो ऑन नंबर 0402323 0030, 2323-4821 या 2970-4715 पर। आपके साथ मुलाकात होगी एक छोटे से अंतराल के बाद, सो स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। मैं हूं आपके साथ आरजी रवली।
2: మీ సొంత ఇంటి కల సాకారానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి అద్భుత అవకాశం.
3: అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 7.15% గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.
2: అంతేకాక మీ యొక్క అత్యవసరాలకై బంగారంపై తక్షణ రుణ సదుపాయం, అతి తక్కువ వడ్డీ

0: राइट, ये बहुत ही प्यारा सा गाना गाया है अरिजीत सिंह ने, तेरा यार हूँ मैं। आई होप आपको ये गाना सुनते हुए कुछ बचपन की वो यादें, या आपके कॉलेज दिनों की यादें आपके दोस्तों के साथ ज़रूर याद आए होंगे। तो फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर एकदम तैयार हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम जी।
0: गुड आफ्टरनून सर। तो बताइए
1: जी
0: सर, एक
1: कैसा
0: ऐसी
1: आता हूँ
0: हैबिट।
1: कल आपका चामल नगर से, और आपको और सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब।

0: और
1: जी
0: सभी को ईद उल अजहा की पुरखलूस दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ,
1: बिल्कुल,
0: और
1: थैंक यू
0: अल्लाह
1: सो
0: से
1: मच
0: दुआ
1: सर
0: करता हूँ आपको सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हेल्दी रखे, सेहतमंद रखे।
1: जी, थैंक यू सो मच सर
0: जी मैडम जी, मेरी बचपन से ये एक आदत है, जैसे बचपन में भी ईद का मौका या घर में कोई भी फेस्टिवल जो भी होता था
1: जी
0: बचपन में, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ब्लाइंड हूँ तो मेरे पापा वो बहुत लाड़ करते थे मेरा, तो हम सारे भाई बहनों में, सारे घर वालों में, फैमिली में मैं
1: जी
0: सबसे पहले तैयार हो जाता था, नहा धो के
1: हाँ हाँ
0: फ्रेश हो जाता था, कपड़े वगैरह यानी
1: जी
0: सारी तैयारियां करने का सबसे अव्वल नंबर मारता था। तो
1: ओके
0: आज भी मेरी वही आदत है, आज भी मैं सुबह सुबह सुबह 4 बजे उठकर चला गया नहा धो के नमाज के
1: ओ
0: लिए,
1: जी
0: और
1: जी
0: सारे फैमिली वाले भाई लोग, पापा लोग, वो सब बाद में आए,
1: बाद में
0: तो मुझे
1: आए
0: आज भी वो बात याद आ गई। आप इतना अच्छा टॉपिक रखे तो मुझे ये बात, मेरी आदत, मुझे अभी
1: हाँ
0: मतलब मुझे बचपन से जो आदत है वो याद आ गई कि हमेशा फ्रेश रहना, और सबसे पहले यानी बीमार रहो या कुछ कोई तकलीफ में रहो या कोई प्रॉब्लम में रहो, लेकिन मैं सबसे पहले अपने आप को फ्रेश करना और तैयार करने वाली आदत अभी तक मेरी बरकरार है अल्लाह के करम से,
1: बिल्कुल
0: और फ्रेश
1: बिल्कुल
0: रहने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और अपने आप को कभी भी मैं बच्चा ही समझने की कोशिश करता हूँ,
1: राइट
0: वो
1: राइट
0: बचपन से
1: बिल्कुल
0: अभी तक मेरी आदत है।
1: राइट हमेशा इसी को अपने अंदर के बच्चे को अलाइव ही रखिए सर। थैंक यू सो मच फॉर
0: जी सर,
1: कॉलिंग।
0: मैडम एक एक गाने की रिक्वेस्ट थी, प्लीज,
1: जी
0: अभी
1: बोलिए।
0: ईद का मौका है
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: सलमान खान साहब का गाना है ना, तुमको ना भूल पाएंगे मैं, मुबारक ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: जी ओके, थैंक यू।
1: तो आप भी आपके जो मोमेंट्स हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हो, कॉल कीजिएगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। तो जैसे हमने कहा, बचपन की स्टोरीज जो है काफ़ी नॉस्टैल्जिक होती है, और फिर जब ऐसी आदतों की बारी होती है, बारे में बात होती है, तो बहुत सारी ऐसी आदतें होंगी बचपन में जो, और हम बड़े होते होते वो कहीं ना कहीं छूट जाती है, राइट। बट कुछ हैबिट्स दिल के इतने करीब होते हैं, या कभी कभार याद आ जाता है, या मन करता है उसे एक बार यू नो करने की, फील गुड महसूस करने की, तो हम उस हैबिट के पास ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, राइट। जैसे कि हमारे दिल और दिमाग में एक कनेक्शन बन जाता है, एंड इट टेक्स अस टू दैट मोमेंट, राइट। हेलो,
2: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम जी।
1: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मेरा नाम कीर्ति राजकुमार, आदर्श नगर निजामाबाद से मैडम जी।
1: राजकुमार जी, जी सर, टॉपिक सुना सर आपने?
2: हाँ मैडम जी, सुना
1: जी सर,
2: ऑन एयर ना?
1: हाँ बिल्कुल
2: ऑन एयर ना?
1: जी,
2: ओके माँ, ओके। मेरा बचपन स्कूल लाइफ में मेरे मेमोरी एक है मैडम जी। मेरा मम्मी ने मेरे टिफिन बॉक्स में लंच वो अचार बना के, आम का अचार बना दिए तो वो डाल के देते थे लंच बॉक्स में।
1: जी
2: फिर नहीं मिलता था, जब
1: हाँ हाँ
2: बाल पप्पू वो गिर जाते
1: जी
2: थे, इस वास्ते वो अचार का टुकड़ा कुछ डाल के दे देते थे, बैग में रखते थे। हमारा दोस्त था, हम लोग क्या करते थे,
1: जी
2: इंटरवल में एक मारवाड़ी आलू भज्जी बेचते थे,
1: ओके
2: गरम गरम गरम गरम आलू भज्जी बेचते थे वहां पर स्कूल के तरफ।
1: जी
2: वहां जाके चाराने में दो आलू भज्जी लेके, दोनों
1: हाँ
2: दोनों लेके पॉकेट में रख लेके अंदर छुपा दे के लंच
1: जी
2: आवर्स में उसके साथ कहा के बहुत मजा उड़ाते थे।
1: जी
2: हाँ,
1: राइट राइट
2: और वही आदत पड़ा मैडम अभी जी, कुछ
1: हाँ
2: दोस्त ना मिले तो शाम में ये दही वड़ा खाना बहुत दिल पसंद लगता है मेरे को।
1: ओके तो अभी भी मतलब आप अपने दोस्तों के साथ ये जारी रखा है आपने?
2: ये तो चालू रखा मैडम जी।
1: जी जी राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी।
2: थैंक
1: थैंक यू सर।
2: यू मैडम।
1: राइट, तो आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आपसे मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू आकाशवाणी फ्रॉम रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली ऑन हेलो रेनबो।
3: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
4: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हो हेलो रेनबो और स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:21:11. तो अगले कॉलर एकदम तैयार है, जानते हैं कि उनकी कोई ऐसी चाइल्डहुड हैबिट है जो अब तक उन्होंने नहीं बदला हो. हेलो.
2: हेलो रवली जी. नमस्कार मैम.
1: नमस्कार सर, कैसे हो?
2: अच्छा है मम्मी भी.
1: जी सर,
2: आप भी अच्छा रहना, घर को भगवान को प्रेयर करता.
1: जी थैंक यू सो मच सर फॉर योर विशेस.
2: पहले क्या कहते, मुझे पहले से आदत क्या है तो सवेरे 4 बजे उठना, 4:30, 4:30, 4:30, 4:30 पाँच के अंदर.
1: हाँ, मिनिमम 5 o'clock तक आप उठ जाते हो.
2: हाँ, 5 o'clock को हाथ मुंह धो ले को, मेडिटेशन कर ले को, फिर को वॉकिंग, बच्चा वॉकिंग बुलाता है, बुला ले जाता है, वॉकिंग जाको आयो, आको स्नान कर को, प्रेयर कर को,
1: तो आपका दिन स्टार्ट हो जाता है थिंक उसके बाद, राइट?
2: हमारा बहू टिफिन लेके आती है, उसमें अच्छा रहती है माँ.
1: राइट,
2: वो आदत कभी ऐसा सच्चा में.
1: हाँ,
2: पहले सी हो चाहे अभी
1: अभी तक आपने जारी रखा है तो है आपके साथ ये हैबिट. राइट सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग सर.
2: थैंक.
1: राइट, तो ऐसी बचपन की कुछ आदतें होती है ना, कुछ हमारी बॉडी के साथ इनट्यून हो जाते हैं. जैसे अब तक दो कॉलर्स ने हमें बताया कि अर्ली राइजर्स हैं ये, तो सबसे पहले उठ के तैयार हो जाते हैं. तो ये आदत जो है ना, एकदम से नहीं बनती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डिसिप्लिन. तो सुबह सुबह उठना, मतलब बचपन से ही उन्हें वो आदत होगी, तो टू कैरी ऑन दैट हैबिट टिल नाउ, मतलब काफ़ी डिसिप्लिन भी चाहिए और पर्सिस्टेंस भी चाहिए टू हेल्प दैट हैबिट, इज़न्ट इट? तो आपकी भी ऐसी कुछ आदतें हैं जो आपकी अभी तक चेंज नहीं हुई है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन 0402323 0030 और 2323481 पर. तो फिलहाल एक और बहुत ही खूबसूरत गाना सुनते हैं फ्रॉम द मूवी यादें, तो एन्जॉय दिस ट्रैक और उन खूबसूरत यादों को एक बार फिर से आप याद कीजिए.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back. आप सुन रहे हैं Hello Rainbow with me RJ Ravli. और आज का हमारा टॉपिक ये था कि बचपन की कोई आदत जो आज तक छूटा ना हो, मतलब आज भी आप उस हैबिट को आपके पास है, या कभी कभी छूट भी गया हो तो उसके पास आप वापस फिर मुड़ के जाना होता है. सो दैट वन हैबिट दैट यू हैवंट चेंज्ड टिल नाउ. तो वो हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो. वेल, तो आदतें बहुत ही फनी भी हो सकती है. जैसे मैंने शो की शुरुआत ही में कहा कि शायद कुछ लोगों को आदत आज भी हो सकती है, स्पेशली विद दैट क्रीम बिस्किट्स. जो पहले क्रीम खाना पसंद करते हैं, कईयों को क्रीम पसंद नहीं है तो जस्ट पूरा क्रीम निकाल के खा लेते हो, या कईयों को कुछ कहानी सुनते हुए खाना पसंद था बचपन में, या अब जो है टीवी देखते हुए खाना, या अपना मन पसंदीदा कुछ देखते हुए खाना, वो एक किस्म का हैबिट हो चुका है. जो हम हैबिट भी नहीं कह सकते, एक सुकून मिलता है अपना मन पसंदीदा कुछ देखते हुए उसे खाना, वो भी एक हैबिट है जो आज भी बहुत हम देखते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर ईटिंग अलोन. स्पेशली क्योंकि कई बार हम दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ नहीं जा सकते टाइम कंस्ट्रिक्शंस के वजह से, प्रोफेशनल वाइफ रीजंस के वजह से. तो कभी कभी जब हम अकेले बैठ के खाते हैं तो दैट वन थिंग्स हेल्प्स यू टू एलिमिनेट ऑल दैट थॉट्स कि हम अकेले हैं या हमारे साथ कोई नहीं है. तो हमारा मन पसंदीदा कुछ हम देखते हुए खाने में भी एक बात ही अलग है ना. और फिर हम भूल जाते हैं वो थॉट्स, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. वी सिंपली फोकस इन वॉचिंग दैट एंड ईटिंग आर फूड, राइट. तो ऐसी आदतें जो आप कि बचपन से है, जो अभी तक आपने नहीं बदला हो, आप हमें कॉल करके बता सकते हो ऑन नंबर 0402323 0030 या 2323-4821-2970471 पर. तो फिलहाल आपके लिए गाना आ रहा है, हमारे कॉलर ने रिक्वेस्ट किया था ये गाना, फ्रॉम द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे. तो एंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आरजे रेवली एंड टाइम इन द स्टूडियो क्लॉक इज़ 1:47:10. तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दैट वन हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड दैट यू स्टिल हैवन चेंज. नो, जैसे हमने कहा कि चाइल्डहुड हैबिट्स नो है नेवर रियली लीव अस, राइट? मे बी यू स्टिल स्लीप हगिंग अ पिलो, मे बी यू स्टिल ईट द क्रीम फर्स्ट फ्रॉम द बिस्किट्स एज़ आई स्पोक अर्लियर, और मे बी यू स्टिल रन टू द किचन द मोमेंट यू स्मेल मैगी बींग कुक्ड, राइट? और ऐसी कुछ हमारी फेवरेट मनपसंदीदा खाना है, स्पेशली बचपन में हम इतना थोड़ी ना सोचते थे कि यार ये खाना अच्छा है ही नहीं हमारे हेल्थ के लिए, ऐसे खाना चाहिए या नहीं, इतना हम कहाँ सोचते थे. बस हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर दिया तो वो हमारा मनपसंदीदा खाना बन जाता था, है ना? तो वैसे ही ऐसे कुछ फूड्स हैं जो हमारे चाइल्डहुड के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज भी हम भले ही उन्हें उतना नहीं खाते हो, बट एटलीस्ट वंस इन अ ब्लू मून की तरह, या एटलीस्ट मंथ में कई बार जब हम उस डिश को खाते हैं तो दैट ऑल दैट मेमोरीज कीप्स फ्लडिंग बैक, राइट? तो आप भी अगर कोई ऐसे मेमोरीज है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए. कॉल करें 0402323002323482128219704715 या 2970-4715 पर, क्योंकि हमारे पास वक्त अभी कुछ ही बचा है, थोड़ी देरी है आपके और मेरा ये साथ ऑन हेलो रेनबो पर. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेल दोस्तों, तो आज का सफ़र आई होप आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारी बातें हमने शेयर की, थोड़ी बहुत नॉस्टैल्जिक जर्नी पे भी हम चले गए थे, जहाँ पे हमने उन फील गुड मेमोरीज़ को हमें मौका मिला इस कारण उन्हें याद करने के लिए, और बचपन से जुड़ी हुई कुछ आदतों के बारे में भी हमारे कॉलर्स ने हमारे साथ साझा किया है, उनकी उनके भी मेमोरीज़ जो है, जो आज तक वो आदत वो कायम रखे हुए है। तो आई होप कि आज का हमारा सफ़र जो है आपको काफ़ी एंटरटेन किया होगा। तो आपसे मुलाकात होगी फिर अगले शो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।

0: ಯಾರೇ
1: ಅಣ್ಣಿ ಧಂಚಮನಿ ಧೋಲ್

0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9
1: స్టూడియో క్లాక్ సమయం 4:04 అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
2: రిప్రజెంటేటివ్ పోలీస్ కే రూప్ మే నీమచ్ మే స్థాపిత్ హుయి ఆర్ విగత్ కై దశకో మే ఆజ్ సిఆర్పిఎఫ్ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ರೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಿ ರೀಡ್ ಹೈ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಜಬ್ ಭೀ ಸಾರೇ ಜಿತನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹೈ ಜೆಸೆ BSF ಇಂಡೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪರ್ ಹೈ ITBP ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪರ್ ಹೈ CISF ವೈಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ಹೈ ಆರ್ SSB ಇಂಡೋ ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇ ಹೈ ವೈಸೆ ಹೀ CRPF ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೈ तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे. और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का CRPF ने काम किया है. और ऐसा वहीं नहीं जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है. और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है.
3: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं. और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन जिसे कहा जाता है बदल देते हैं. तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह. और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं. हमारा नंबर है 9868107070 इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं. तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए जरूर.
4: एक

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ। मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे। तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है। और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया।

0: कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं
1: जी। तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कॉन्डक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं, एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है
1: जी। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफ कोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात। तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी की बात है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और को छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस

0: किस प्रकार के बालक हुआ करते थे, शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था। आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था। तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद, वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक
0: अलग
1: अलग
0: तरह से
1: अलग
0: निखर
1: अलग
0: कर आता
1: तरीके
0: है।
1: का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा सीआरपीएफ में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: एडिशनल
1: अपने,
0: तैयारी जैसे बच्चे
1: हाँ,
0: अक्सर
1: बहुत
0: करते हैं कई
1: मशक्कत नहीं
0: फोर्सेस
1: करनी
0: ज्वाइन
1: पड़ी।
0: करने से
1: उसके
0: पहले।
1: बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी
1: जी
0: जी तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी,
0: जी तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक. मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल. और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स. और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं. और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है. और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान. कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को. तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें. तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में.
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में. और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है. चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज़ ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी. आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल. फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था. और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था. तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में. CRPF ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में. तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है. इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है. हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया.

0: कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें किसी भी बटालियन को, या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को एक अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाले फोर्स के रूप में रखती है।
1: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में अब हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना। क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल

0: सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स हैं, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई, तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और CRPF ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और CRPF ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में, तो CRPF का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो CRPF आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी CRPF के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब ही रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो CRPF एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं, तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा CRPF का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी CRPF, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल, जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए CRPF हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह, क्या
0: बात। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह, क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह CRPF, आप CRPF में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम CRPF के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है
1: जी। एक बात बताइए कि

0: पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे, ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
1: जी,
0: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज़्यादा स्थापित कर सके। तो क्या आपकी किसी, ये कहूँगी कि जो आपने सोचा हुआ था, आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
1: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो CRPF में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
0: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
1: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो CRPF करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी CRPF करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
0: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: वाह क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और

0: ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं आप। एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर। आप एक सोल्जर हैं। आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है। आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा।
0: शायद
1: जी
0: समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत,
1: जी जी
0: बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से
1: जी
0: आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPM ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ आप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियाँ मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर

हमारा स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी, 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन

0: कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी, आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टेल्जिया वाली फीलिंग थी। एक मैं अब अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टेल्जिया वाली फीलिंग थी। तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टेल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीत माला लेकर आते थे,
0: हाँ
1: और तो वो हमारी बचपन की यादें थी। हम देखते थे
0: हाँ
1: और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीत माला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या
0: हाँ
1: गोल्डन
0: हाँ
1: वॉयस थी उनकी।
0: बिल्कुल
1: तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस
0: बिल्कुल
1: मौके के
0: बिल्कुल
1: लिए।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो CRPF ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
0: बिल्कुल
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचाते हैं रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है। जी
1: निसंदेह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज आपका, आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से स्टूडियो
1: धन्यवाद
0: में आने के
1: धन्यवाद।
0: लिए।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद।

ವೇಣು ಕುಲಕಿಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲಕಡಲಿ ಪೈ ಶೇಷ ತಲ್ಪ ಮುನ.

0: Salıttı gediler.
1: FM Rainbow 101.9.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। तो आइए आपको नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील बताते हैं। दोस्तों,

भी जरा चौकन्ना चौकन्ना हूँ मैं भी, है दुनिया भी लगाए घात अबके, है दुनिया भी लगाए घात अबके। सलीम अल्फाज बोदे लग रहे हैं, सलीम अल्फाज बोदे लग रहे हैं, है ऐसी शिद्दते जज्बात अबके, है ऐसी शिद्दते जज्बात अबके। और सामईन, एक गज़ल से पहले दो शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखें कि मैं जैसा सोचता हूँ काश वैसी जिंदगी होती, मैं जैसा सोचता हूँ काश वैसी जिंदगी होती, ये दिल पत्थर का होता और दुनिया कांच की होती, ये दिल पत्थर का होता और दुनिया कांच की होती। अरे चरागों से अंधेरा मिट न पाया करियाए गम का, चरागों से अंधेरा मिट न पाया करियाए गम का, कि मैं खुद को जला लेता तो शायद रोशनी होती, कि मैं खुद को जला लेता तो शायद रोशनी होती। और ये गज़ल मुलाहजा करें, मतलब किया है कि दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूं, दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूं, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूं, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूं। शेर देखें कि नाखून से तराशा था जहां तूने मेरा नाम, नाखून से तराशा था जहां तूने मेरा नाम, एक ख्वाब सा लम्हा मैं उसी डाल पे रख दूं, एक ख्वाब सा लम्हा मैं उसी डाल पे रख दूं, जुल्फों से तेरी फाल घटाओं का निकालूं, जुल्फों से तेरी फाल घटाओं का निकालूं, और नाम सितारों का तेरी चाल पे रख दूं, और नाम सितारों का तेरी चाल पे रख दूं। और ये शेर मुलाहजा करें, तू कह दे तो मैं डाल दूं रद्दी में किताबें, तू कह दे तो मैं डाल दूं रद्दी में किताबें, संदल की ये शाखें भी किसी टाल पे रख दूं, संदल की ये शाखें भी किसी टाल पे रख दूं। और ये शेर सुनाकर मैं आपसे विदा लेता हूं। देखें के हुक्के की सुबुक नए पे अजब जंग चढ़ा है, हुक्के की सुबुक नए पे अजब जंग चढ़ा है, फिर धो के इसे गांव की चौपाल पे रख दूं, फिर धो के इसे गांव की चौपाल पे रख दूं, दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूं, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूँ। मोहतरम सामईन, कुछ मुतफरी अशआर और पेश खिदमत हैं। अर्ज़ किया है कि कई रंगों के हंसने और रोने रखे जाते हैं, कई रंगों के हंसने और रोने रखे जाते हैं, मैं वो शोकेस हूँ जिसमें खिलौने रखे जाते हैं, मैं वो शोकेस हूँ जिसमें खिलौने रखे जाते हैं। दिले नादा ये बस्ती बेनमक जज्बों की बस्ती है, दिले नादा ये बस्ती बेनमक जज्बों की बस्ती है, यहाँ आंसू फकत पलकें भिगोने रखे जाते हैं, यहाँ आंसू फकत पलकें भिगोने रखे जाते हैं। और ये शेर मुलाहजा करें कि हमें जीने को दी जाती है कड़वी जिंदगी जितनी, हमें जीने को दी जाती है कड़वी जिंदगी जितनी, नज़र में ख्वाब उतने ही सलोने रखे जाते हैं, नज़र में ख्वाब उतने ही सलोने रखे जाते हैं। सफ़र दरिया के बीचों बीच आसानी से कटता है, सफ़र दरिया के बीचों बीच आसानी से कटता है, किनारे गालिबन कश्ती डुबोने रखे जाते हैं, किनारे गालिबन कश्ती डुबोने रखे जाते हैं। और ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। देखें कि मेरी आगोश पैरहन तेरा, मेरी आगोश पैरहन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा, बज्म सजती है जब सितारों की, बज्म सजती है।

0: जब सितारों की नाम लेती है हर किरण तेरा, नाम लेती है हर किरण तेरा, शहर में भी हैं लड़कियां लेकिन, शहर में भी हैं लड़कियां लेकिन, मुझको भाए गंवारपन तेरा। अरे नकल तेरी उतारती है सबा, नकल तेरी उतारती है सबा, है हवाओं में बांकपन तेरा। और ये आखिरी शेर आपकी खिदमत में कि मेरी मंजिल है मेरे कदमों में, मेरी मंजिल है मेरे कदमों में, सर में सौदा है जाने मन तेरा, सर में सौदा है जाने मन तेरा, मेरी आगोश पैरहन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा।
1: गजल पेश कर रहा हूँ, मतला मुलाहिजा फरमाए कि सलीका मुझ में जीने का बहुत है, सलीका मुझ में जीने का बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, और मेरे अंदर है कोई नफ्स दुश्मन, मेरे अंदर है कोई नफ्स दुश्मन, खता पर मेरी चिल्लाता बहुत है, खता पर मेरी चिल्लाता बहुत है, और सुकूने दिल ज़रा लाकर दिखाओ, सुकूने दिल ज़रा लाकर दिखाओ, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, और है खुफले मसलहत उसकी ज़ुबां पर, है खुफले मसलहत उसकी ज़ुबां पर, मगर आँखों से वो कहता बहुत है, मगर आँखों से वो कहता बहुत है, और किसी पर कैसे मैं उंगली उठाऊं, किसी पर कैसे मैं उंगली उठाऊं, और मेरा दामन भी तो मैला बहुत है, मेरा दामन भी तो मैला बहुत है, और तमाजत पी के भी देते हैं साया, तमाजत पी के भी देते हैं साया, घने अशजार में ममता बहुत है, घने अशजार में ममता बहुत है। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए कि मियाँ हमने भी तो देखी है दुनिया, मियाँ हमने भी तो देखी है दुनिया, हमें भी तजुर्बा थोड़ा बहुत है, हमें भी तजुर्बा थोड़ा बहुत है, और मख्ता यूँ है कि न फल आए शजर पर और न पत्थर, न फल आए शजर पर और न पत्थर, शकील आंगन मेरा सोना बहुत है, शकील आंगन मेरा सोना बहुत है, सलीका मुझ में जीने का बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, के रिस रहा है जो शकील आंखों से उसकी पानी, रिस रहा है जो शकील आंखों से उसकी पानी, और दिल में शायद कोई छाला था वो फूटा होगा, दिल में शायद कोई छाला था वो फूटा होगा, वो जो हसास है बिल्कुल मेरे जैसा होगा, उसकी आंखों से भी एहसास पिघलता होगा। एक आखिरी गजल पेश कर रहा हूँ, मतला मुलाजा फरमाइए कि सफर में साथ दुआओं की ढाल रखा कर, सफर में साथ दुआओं की ढाल रखा कर, करीब आते नहीं हादसात घबरा कर, करीब आते नहीं हादसात घबरा कर, और हिसारे जात में रहकर सजा न दे खुद को, हिसारे जात में रहकर सजा न दे खुद को, कभी कभी सही अंदर से अपने निकला कर, कभी कभी सही अंदर से अपने निकला कर, और खुदा का शुक्र के बेटी की हो गई शादी, खुदा का शुक्र के बेटी की हो गई शादी, मैं आज चैन से सोता हूँ पाँव फैला कर, मैं आज चैन से सोता हूँ पाँव फैला कर, अगर हो जलना मुकद्दर में बुझ नहीं सकते, अगर हो जलना मुकद्दर में बुझ नहीं सकते, हवा की जद पे चरागों को अपने रखा कर, हवा की जद पे चरागों को अपने रखा कर, आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि रहेगा जिस्म में जब तक निजाम सांसों का, रहेगा जिस्म में जब तक निजाम सांसों का, हर एक जज्बे को अपने रखेंगे गरमा कर, हर एक जज्बे को अपने रखेंगे गरमा कर। मख्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि तू धोना चाहे अगर दागदार दामन को, तू धोना चाहे अगर दागदार दामन को, शकील फूट के तन्हाइयों में रोया कर, शकील फूट के तन्हाइयों में रोया कर, اور سفر میں ساتھ

सिया अब्र के साथ कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, चांद इटकेलियां करता है सिया अब्र के साथ, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे। यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे। यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे। शेर पेश करता हूं कि उनकी आहिस्ता खिरामी का ये आलम तौबा, उनकी आहिस्ता

दोस्तों, फिल्म बॉर्डर से अभी आपने सुना ये खूबसूरत और जज्बाती नगमा। दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM पर प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? अगर हुई है तो कभी ऐसा हुआ कि आप जिस महफिल में हैं उसी महफिल में आपका महबूब भी है, मगर आप उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते हैं? शायद उर्दू के मशहूर शायर मीर तकी मीर ने ऐसे ही किसी मौके के लिए कहा था, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। दोस्तों, महफिल में आपका महबूब है और आप भी हैं, और एक ऐसा लम्हा है जहां मोहब्बत करवटें बदलना चाहती है, तो इन तमाम मंजर के को याद रख।

दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म मुगले आजम से। दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे सुन रहे हैं खूबसूरत और दिलकश फिल्मी नगमे। दोस्तों, मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। महबूब को अपनी महबूबा की हर चीज़ बहुत प्यारी और दिलकश मालूम होती है, चाहे उनकी जुल्फ़ों का लहराना हो या उनका एक नज़र देख लेना हो, या अगर किस्मत से कभी थोड़ी सी उनकी कुर्बत नसीब हो गई तो वो किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होता। शायद ऐसे ही किसी लम्हे के लिए किसी शायर ने कहा है, वो तो वो हैं तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो हैं तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा महबूबे नज़र तो देखो।

दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुना फिल्म नया दौर से। आवाज़ थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है अच्छा साथ। अगर साथ अच्छा हो तो मौसम भी सुहाना लगता है, मौसम हसीन लगने लगता है। लेकिन अगर साथ अच्छा ना हो और मौसम लाख सुहाना हो, खूबसूरत हो, दिलकश हो, तब भी अगर साथ अच्छा ना हो तो मौसम अच्छा नहीं दिखता।

दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने फिल्म में कटी पतंग से ये शोख और चंचल नगमा सुना। दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है, मैं हूँ आरजे उसामा और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में नशीब व फराज़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है और इंसान को हालात से लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और ज़िंदगी इसी का नाम है। तो ज़िंदगी के हर पल को बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मुस्बत होकर सोचना पड़ेगा। अच्छे बुरे हालात तो आते रहते हैं, लेकिन हालात से लड़ना ही असल बहादुरी है। किसी शायर ने कहा है, ज़िंदगी तूने बहुत रक़्स कराया है मुझे, ज़िंदगी तूने बहुत रक़्स कराया है मुझे, अब ये हसरत है कि मैं तुझको नचा कर देखूं।

दोस्तों, आपने अभी लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सौतन से ये गीत सुना। दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे, और इन नगमों से मुझे उम्मीद है कि आप खूब लुत्फ़ानंदोज़ भी हो रहे हैं। ये नगमे हमारे अंदर सरायत कर जाते हैं और एक हमें एक अलग दुनिया में लेके जाते हैं। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हे आते हैं और एक ऐसा लम्हा भी आता है जब इंसान को किसी न किसी से प्यार हो जाता है, या वो पहला पहला प्यार होता है जो इंसान का हमेशा ता हयात पीछा

दोस्तों, अभी आपने शमशाद बेगम, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सीआईडी से ये गीत सुना। दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और खूबसूरत फिल्मी गीतों का सफ़र जारी है। प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं दिलकश फिल्मी नगमे, और अब पेश है मशहूर कव्वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ पुराने फिल्म गीतों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है और अब पेश है पयाम-ए-शब, तहरीर व पेशकश है जनाब ज़ैदी साहब की।

0: चाहिए हिसाब किताब नहीं। हर इंसान का दिल नाजुक होता है, हमें अपने अल्फाज और रवैये में एहतियात करनी चाहिए ताकि किसी को गैर जरूरी दुख ना पहुंचे। अगर ताल्लुक में सच्चाई और खुलूस हो तो मुश्किलात भी आसान लगने लगती हैं, वही छोटी बातें भी बोझ बन जाती हैं। मोहब्बत और वफा के रास्ते पर चलने के लिए दिल की नरमी, सब्र और माफी बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता बोझ बन जाता है।
1: दोस्तों, रिश्तों में वफा की अहमियत पर अभी आपने प्याम शब सुना और इसी पैगाम के साथ नरंग इख्ताम पजीर होता है। अगली बज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है। आपने प्रोग्राम नए रंग समाप्त किया और अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: ಕುಮಾರ್. गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है. गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही.
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है. ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी.
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी. वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है. श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है. हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है.
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया. अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ. दूसरी तरफ DK शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई.

0: दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमान के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन कनेक्शन विद द 90 इयर्स सेलिब्रेशंस ऑफ आकाशवाणी वी नाउ ब्रिंग यू ए स्पेशल फीचर टाइटल्ड वेस्टर्न बीट्स ऑन आकाशवाणी दिल्ली थ्रू द प्रिज्म ऑफ 90 इयर्स।
4: Social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency today. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week.
5: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The demographic change committee will submit its report within 1 year, and we will work towards preventing artificial demographic changes.
6: Demographic change jo hai usko rokne ka hum kaam karenge.
4: Mr. Shah recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. He highlighted his supreme sacrifice and lifelong dedication to the motherland. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today released over 10,000 crore rupees to 12 states under the Pradhan Mantri

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत के सफर पर आज मैं हूँ आपके साथ कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

फिल्म मन की आंखें का ये गीत आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुना। इससे पहले आपने सुना फिल्म कुदरत का गीत परवीन सुल्ताना की आवाज में। साथियों, जाने वाले कभी कभी लौट कर नहीं आते। आज मशहूर शायर बशीर बद्र साहब ने इस फानी दुनिया से रुख्सती ले ली। उनके जाने से दिल की धड़कनों के गीत मानो खामोश हो गए हैं। वो भले चले गए, लेकिन वो अपने शेरों में हमेशा गुनगुनाए जाएंगे। जब भी उनके शेर कहीं कोई भी पढ़ेगा तो वो हर कहीं बोल पड़ेंगे। उन्होंने क्या खूब लिखा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इसके अलावा बशीर बद्र लिखते हैं कि मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होठ रख देना, मैं जब सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। आइए उनकी याद में सुनते हैं फिल्म ममता का ये गीत।

फिल्म लैला मजनू का ये गीत आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। बशीर बद्र साहब लिखते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। अगला गीत लिया है हमने फिल्म दिल एक मंदिर से, लता मंगेशकर की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

प्यार में सारा आलम खोना एक तरफ और प्यार को निभाना दूसरी तरफ, इसीलिए तो शायद बशीर बद्र साहब ने लिखा होगा कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हाँ, मगर मिला करो, है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये रात, ये जिंदगी गुजर जाए और बातें अधूरी ही रह जाएं। कुछ ऐसा ही कह रहा है ये अगला गीत फिल्म नवरंग का।

फिल्म ठोकर का ये गीत आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। इससे पहले आपने सुना फिल्म अभिमान का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ये प्यार भी अजीब शह है ना, लोग जिंदगी हार जाते हैं। बशीर बद्र साहब ने क्या खूब लिखा कि दुआ करो कि मैं एक उम्र तक उसे चाहूं, वो जिंदगी जो मेरे नाम उसने की है अभी। अगला गीत लिया है हमने फिल्म धरती कहे पुकार से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जयती आ चुकी हैं आगे का कार्यक्रम लेकर, कुसुम को दीजिए इजाजत। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में ना रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के अध्यक्ष संजय गोविंद ने कहा कि लाउडियम और आसपास के क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और ये एकता आगे भी कायम रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Union Home and Corporation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week.
2: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The Demographic Change Committee will submit its report within 1 year and we will work towards preventing artificial demographic changes.
3: Demographic change jo hai, usko rokne ka hum kaam karenge.
1: Mr. Shah recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. He highlighted his supreme sacrifice and lifelong dedication to the motherland. Prime Minister Narendra Modi yesterday met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. The longest-serving chief minister in Karnataka, Siddaramaiah, submitted his resignation in the governor's office in Bengaluru yesterday after a breakfast meeting with his cabinet colleagues. Addressing the media persons later without naming D.K. Shivakumar, he asked the governor to invite the CM-designate for taking up the mantle of chief ministership in the state. The governor, who is on tour, has to return to decide on the resignation submitted by Siddaramaiah. Eid ul-Azha, the festival of sacrifice, was celebrated with religious fervor and due reverence across the country yesterday. The devotees

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि तहजीब, मोहब्बत और इंसानी रिश्तों की नरमी का एक पूरा दौर हमसे विदा हो गया। पद्मश्री बशीर बद्र साहब ने उर्दू गजल को महफिलों से निकालकर आम दिलों की धड़कन बना दिया। उनके अल्फाज में ऐसी सादगी थी जो सीधे रूह तक उतर जाती थी। उन्होंने टूटन को भी इतनी खूबसूरती से लिखा कि दर्द इबादत सा लगने लगा। मुशायरों की वह गर्मा

हमारी आवाज व लहजा वो अपनापन अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। उनकी शायरी ने पीढ़ियों को प्रेम, संवेदना और रिश्तों की अहमियत सिखाई। आज अदब का आकाश कुछ और सूना है, मगर उनके अशार हमेशा रोशनी की तरह हमारे बीच रहेंगे। बशीर बद्र साहब को आकाशवाणी की तरफ से, हमारे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उर्दू साहित्य का ये सितारा कभी भुलाया नहीं जा सकता।

सुनो फिर मिलना, सुनो फिर मिलना, अगली बार अगले जन्म, सुनो फिर मिलना, सुनो फिर मिलना, जो रह गया हिसाब बाकी, फिर मिलना, पूरी करनी है हर मुराद, फिर मिलना, न लाना बीच में काश, सुनो फिर मिलना, न लाना बीच में काश, सुनो फिर मिलना, फिर मिलना, अगली बार अगले जन्म, सुनो फिर मिलना। और अगला गीत फिल्म मौसम से, आवाज है भूपिंदर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं

0: अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ಅಲ್ಲ. उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गए, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में आज जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की।

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है काजल, आवाज है आशा भोसले की।

यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो, उसे भूलने की दुआ करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। अरब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चरस, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है राजा और रंक और आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जल डरमुर मध्य के ऊपर ईरानी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है एतबार, आवाज है आशा भोसले और भूपिंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, ये जब न गुजरा था तब कहाँ था। कहीं तो होगा, गुजर गया तो अब कहाँ है। कहीं तो होगा, कहां से आया किधर गया है। ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। और अब आइए सुनते हैं एक गजल, आवाज है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब की।

अरे वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पर ये बताना हम नहीं भूल सकते कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल को सचिव

0: राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। यह कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Union Home Minister Amit Shah yesterday held a meeting to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Shah said that Narendra Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय समय हुआ है रात्रि के 3:10। मैं पंकज आपके साथ इस शांत रात में, लेकिन अब शुरू होता है हमारा ही शो और इसमें आपके लिए मैं पूरे घंटे प्ले करूंगा ड्यूएट्स गाने। तो शुरुआत करते हैं दो गानों से और फिर इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं।

आज के धूम धड़ाके वाले गाने के सिंगर्स में जो हैं पुराने जमाने के गाने के जो हैं डाई हार्ट फैंस हैं, और उन सिंगर्स को तो बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करते हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर अपने गानों से इन्होंने कमाल जो कर दिया है। हमराही शो की इस आधी रात में आपने बेताब मूवी का गाना सुना, शब्बीर कुमार और लता जी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज आपके लिए इस पूरे घंटे प्ले करूंगा पुराने डुएट्स गाने, यानी बॉलीवुड के गोल्डन एरा के पुराने गानों का मजा लेंगे मैं और आप। तो अपने दिन की सारी बेकार की बातों को भूल जाइए जिन्होंने आपको टेंशन में रखा, थका कर रखा, और बस आप इन गानों का मजा लीजिए और मुझ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो मैं बातें आपसे करूंगा और आपके लिए जो गाने मैं प्ले करूंगा बस। और तो हाँ, बस इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, बाकी मैं सोच लूँ और कौन कौन से गाने आपको अच्छे लगेंगे, वो गाने आपके लिए मैं निकाल लेता हूँ। अभी के लिए सुनिए मैंने प्यार किया मूवी का ये गाना आपके लिए मेरी तरफ से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आंगन की गली फिल्म से ये गाना था, और जितनी अच्छी ये पुराने गाने हैं उतनी अच्छी ये पुरानी फिल्में भी हैं। और मैं मेरा तो हमेशा एक से एक सीन रहता है कि फ्राइडे रात को या फिर सैटरडे रात को जो है आराम से अपना सारे काम ख़त्म करके उसके बाद फिर कोई पुरानी मूवी ऑनलाइन देखना, और सच में बहुत मज़ा आता है। 2-3 घंटे तो इतने प्यार से बीत जाते पता ही नहीं चलता। खैर, मैं हूँ पंकज आपके साथ हमराही शो में, और जब ये गाना चल रहा था ना कि सैया बिना घर सूना, मुझे ऐसा लगता है रिश्तों की वैल्यू बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और जब हमारे अच्छे दिन चल रहे होते ना और उस समय कोई अगर आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाए तो सच मानिए उस हाथ को ना थाम लेना चाहिए, लपक लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, रिश्ते बहुत मिल जाएंगे लेकिन रिश्तों में प्यार मिलेगा या नहीं ये मुद्दे की बात है। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और अगर आपको प्यार मिले तो खुद को खुश नसीबों में गिन लीजिए।

देवान फिल्म का गाना आपने सुना, पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, अजीज कैसी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये गाना चल रहा था, एक बार सोच रहा था कि आज रिश्ते नाते जो हैं वो तिनकों की तरह बिखर रहे हैं और जाने मन में बसा प्रेम जो है वो लोगों के कहाँ खो गया है। अहंकार जो है संबंधों में दीमक का एक तरह से काम करता है, और वैसे भी रिश्ते नातों में कहते हैं ना कि जो सह गया वो रह गया। हर बात पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ खट्टी बातें ना सिर्फ मन को कुछ देर परेशान करने के लिए लोग कह जाते हैं। उनका उद्देश्य आपको खोना नहीं होता, बल्कि समझाना होता है कि भाई जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझो। हाँ, तरीका थोड़ा तल्ख हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, कहते ना कि हर बात पे मुंह बना लेना ज़रूरी नहीं है। हमराही शो में मैं हूँ पंकज, आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और जब भी कभी आपको अपने साथी पर तैश आए ना, तो ये भी ज़रूर सोचिएगा कि यही इंसान है जिसने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ भी किया है। तो बाकी आप जो है ऐसे ही आप गाने सुनते रहिए। और हाँ, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले घंटे सुबह 4:10 पर, हमरा ही शो का जो ये है ये आखिरी गाना है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा सुबह 4:10 पर अरुणिमा शो में। तो अभी के लिए आप इस गाने का वो इन्जॉय करिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी बस ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वे कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थंगडी स्थित सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वे केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया।

0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री मांडविया इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल अवसंरचना विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे युवा कार्यक्रम विभाग के एक विचार विमर्श सत्र को भी संबोधित करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Kerala from today till 31st of this month. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he'll attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Devanagari, Karnataka. Tomorrow, Mr. Radhakrishnan will participate in the Statehood Day celebrations of Goa at Panaji and will also visit CSIR National Institute of Oceanography in Goa. The Vice President is also scheduled to inaugurate the Sri Industrial Park at Belthangandi and visit the Sri Chetra Dharmsthala Manjuthana Swami Temple in Karnataka on 31st of this month. Later on the same day, he'll visit Keralam to inaugurate the 140th Foundation Anniversary celebrations of Deepika Malayalam Daily at Kottayam. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate, COET UG, 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of the next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that admit cards for candidates appeared

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूं आपके साथ और अब शुरू होता है हर सुबह की तरह अरुणिमा कार्यक्रम। और अब मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गाने के साथ।

जगजीत सिंह जी की आवाज़ में ये सुकून देने वाली गज़ल आपने सुनी, और फ्रॉम द एल्बम तुम तो नहीं हो, इसे लिखा था बशीर बद्रू साहब ने। इस गज़ल की एक लाइन जो है मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छूती है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है।

बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ, मुद्दत हो गई है। हाय। और आप समझ ही गए होंगे कि मैंने बशीर बद्र जी की लिखी हुई इस गज़ल की दो लाइनों को क्यों कहा। कल यानी 28 मई 2026 को भारतीय शायर बशीर बद्र जी ने दुनिया से विदा ले ली। FM गोल्ड पर भी आपने आज उनके बारे में बातें सुनी, उनकी लिखी हुई गज़लें सुनी और उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। वैसे तो देखिए, जीवन का एक दिन समापन होना ही है हम सबका, और कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, कोई अचानक जाता है। लेकिन जब ऐसे शायर संसार से रुखसती करते हैं तो मलाल तो होता ही है। एक से बढ़कर एक गज़लें लिखी बशीर बद्र जी ने। 91 साल की एज में बशीर बद्र जी जो है डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने फिर कल अपने घर पर अंतिम सांस ली। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज आपके साथ अरुणिमा शो सुन रहे हैं आप। आकाशवाणी परिवार भी बशीर बद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनकी लिखी हुई गज़ल की ये लाइन भी मुझे बहुत गजब की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जुबान सब समझते हैं जज्बात की। खैर, और अब बशीर जी की लिखी हुई इस गजल का लुत्फ लीजिए तलत अजीज जी की आवाज में। और इस गजल के बाद, फिर उसके बाद आप एक गाना सुनेंगे। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ सिर्फ अरुणिमा शो में।

रूप तेना मस्ताना मूवी से ये गाना था। किशोरदा और लता जी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। सबको पता ही है कि कल यानी 28 मई को मशहूर और हर दिल अजीज शायर बशीर बद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, और मैंने भी आपके साथ उन्हें अभी याद किया। आप सुन रहे हैं अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। बशीर बद्र जी की लिखी हुई हर गजल जो है वो बहुत शानदार और अपने आप में मायने लिए हुए है। एक गजल है ना, आपको उन्हीं की लिखी हुई सुनाता हूं, जिसका टाइटल है यूं ही बेसबब ना फिरा करो। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुनके, बहुत अच्छी है, बहुत डीप मीनिंग्स हैं इसके। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कभी हुस्ने पर्दा नशी भी हूं जरा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन संवर के कहीं चलूं मेरे साथ तुम भी चला करो। ये खिजां की जर्द सी शाम में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नजर का कोई असर नहीं, उसे इतनी गर्मी ये शौक से बड़ी देर तक ना थका करो। कौन ना फिदा हो जाए इस पर। और मुझे तो सबसे बहुत प्यारी जो मुझे लाइनें लगी वो तो ये थी कि मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कहाँ सुन पाते हैं लोग दिल की बातें। खैर, अब सुनिए विशाल भारद्वाज की आवाज़ में ये गाना, इसे जो है बशीर बद्र जी ने लिखा था। तो आप सुनिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हसीना से यूं मुलाकात

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

लाइफ की सिचुएशंस को बस इतना भी गंभीर नहीं लेना चाहिए जितने में हम अपने जो है जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा वैसे मैंने आपसे शायद पिछले घंटे आपसे बात की थी कि पता नहीं मैं आज कौन सी मूवी देखने वाला हूँ ऑनलाइन फ्राइडे, तो अभी तक तो मैं कन्फ्यूज था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अजनबी 1974 में रिलीज़ हुई इसी मूवी को आज रात में देखूंगा। आज या तो आज रात को देखूंगा टाइम मिला तो, बाकी कल देखूंगा। पुरानी फिल्मों का जादू सच में एक अलग ही होता है। और ये इस गाने में आपने देखा कि जीनत अमान जी जो है वो कितनी बला की खूबसूरत लग रही हैं। खैर मैं हूं पंकज आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर शो है अरुणमा। जीवन जो है सुख दुख का संगम है, और सुख का मजा भी थोड़ी कठिनाई झेलने के बाद ही आता है, जैसे तेज गर्मी के बाद बारिश का। वैसे भी दिल्ली में जो है थोड़ा सा मौसम, हल्का सा मौसम जो है ठंडा हुआ है अभी तो, थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर डेज आज थोड़ा सा हल्का मतलब थोड़ा सा ठंडा है। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, आप ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, मैं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभिमान फिल्म से लता जी की आवाज में ये गाना था, एस डी बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य जो होता है हमारे तन और मन की खुशी होती है। हम गाने भी मन को खुश करने के लिए सुनते हैं और मन खुश तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। वैसे इस समय बाहर की ताज़ी हवा से भी हमारा शरीर जो अच्छा रहेगा। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप घर की खिड़की या अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो विंडो ओपन करके आप बाहर की ताज़ी हवा का मज़ा ले सकते हैं। वैसे भी आज मौसम जो है थोड़ा सा भी ठीक हुआ है, हल्का सा ठंडा हुआ है। बाकी अगला शो भोर सुहानी होगा यानी सुबह 5:10 पर, और इन गानों के बाद हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगा 5:10 पर। अभी के लिए सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के अरुणिमा शो का ये लास्ट गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वो कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन कल पणजी के गोवा में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड्डी स्थित CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वो केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी बधाई दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक

0: एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। हांगकांग में 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, "The dedication to the tribal community is truly commendable." He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of the tribal communities and their empowerment. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harp Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, "Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. Keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with the global standards." In line with this, review meetings were held in Ahmedabad regarding the progress of sports infrastructure and related projects, he said. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate COET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Zaha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, coet.nta.nic.in.

आसमान में भी धीरे धीरे उजाला हो चुका है। सुबह के 5:10 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूं आपके साथ और भोर सुहानी शो अब शुरू होता है। दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं।

जिंदगी में जब कोई एक पसंदीदा शख्स आ जाए ना, तो मानो जैसे घुटन से भरे कमरे में ठंडी ताजी हवा आ गई हो, ऐसा होता है प्रेम का जादू। वैसे गानों का मैजिक भी मूड बदलने का काम करता ही है। और ये गाना था फ्रॉम द मूवी किसी से ना कहना, आशा जी की आवाज में। और पता है, आपने कभी नोट किया होगा कि सुबह सुबह जो गाना आप सुनेंगे ना, पूरा दिन आप वही गुनगुनाएंगे, और अगर नहीं भी गुनगुनाएंगे ना, अंदर ही अंदर वो गाना तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसे गा नहीं लेंगे। ऐसा होता है। खैर, सुबह हो गई है, भोर सुहानी शो शुरू हो चुका है मेरे यानी पंकज के साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। सुबह के 5:22 हो चुके हैं और मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ आसमान जो है काफी, मतलब अब तो काफी विजिबल हो जाता है गर्मी में तो। अब उफ, गर्मी तो खैर बहुत ज्यादा अपने चरम पर है, लेकिन अभी जो है, अभी प्रेजेंट में मौसम जो है थोड़ा ठीक है, इसलिए आप जब भी दिन में बाहर निकलें तो अपने साथ ठंडा पानी या नींबू पानी पीते रहने के लिए जरूर ले जाएं। और आपके लिए मेरे पास बर्फ से ठंडे गाने जिन्हें सुनकर आपको ठंडक मिलेगी, तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पता है, मैं हमारे स्टूडियो की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, इतने हरे भरे, मतलब आकाशवाणी में इतने पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे मतलब लगता है। विंडो से देखो तो और भी अच्छा व्यू आता है। और ये बात मैंने इसलिए बोली कि अगर हमने प्रकृति और पानी को नहीं बचाया ना, तो सिर्फ अच्छे मौसम और पानी के वीडियोज़ जो हैं वो हमें यूट्यूब पर ही देख कर काम चलाना पड़ेगा। और देखिए, आज 29 मई है, 1 तारीख को सोमवार है, यानी जून का महीना शुरू हो जाएगा। और जून जुलाई की झुलसाने वाली गर्मी में जो है, हम सावधानी से पानी का इस्तेमाल करें, बिजली बचाएं, और अपने घर के आसपास और अपने घरों में भी खूब सारे पेड़ पौधे और जो है